0: वसंत ऋतु को हरियाली पहाड़ संगे भित्रिएको नव वर्ष 2083 साल को हर्ष उल्लासमय इस पावन अवसर में हमी हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग व्यापारी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल नागरिक समाज विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय पत्रकार सुरक्षाकर्मी आमा समूह युवा क्लब साहित्यकार शिक्षक विद्यार्थी लगायत देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नास्ता पसल सुनसहरी झरना को छेउमा सुनसहरी गाउँ पालिका 4 सिउरी रोल्पा हजुर हामी कहाँ चाउमिन चाउचाउ अंडा चना चटपटे जूस अदर अनुसार खाना का साथ विभिन्न किसिम का नास्ता पाइन्छ। प्रोप्राइटर नीले विश्वकर्मा संपर्क मोबाइल नंबर 97627888132। मामा भन्ज नास्ता पसल सुनसहरी झरना को छेउमा सुनसहरी गाउँ पालिका 4

0: वसंत ऋतु को हरियाली पहाड़ संगे भित्रिएको नववर्ष 2083 साल को हर्ष उल्लासमय इस पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण ग्राहक वर्ग व्यापारी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल नागरिक समाज विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय पत्रकार सुरक्षा कर्मी आमा समूह युवा क्लब साहित्यकार शिक्षक विद्यार्थी लगायत देश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हरि क्याफे कर्मा रोल्पा नगरपालिका 4 टुली खेल लिबाङ रोल्पा। हामी कहाँ अर्डर अनुसार विभिन्न किसिमका केक लस्सी चिया कफी दही आदि पाउनुका साथै होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत रहेको छ।
2: प्रोप्राइटर हरि डागी, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98674052।
1: हरि क्याफे कर्मा रोल्पा नगरपालिका 4 टुली खेल लिबाङ।

0: जजला टायर चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 1 बज्यो।
1: रेडियो थाहा संसार 99.4 मा अबको प्रस्तुति।

0: एकमात्र डीटीएच सेवा डिस्को देशो खुशी को कनेक्शन
1: सयों रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN.
2: This is the BBC.

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन